तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। आगे शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धरनाशकाय कंठ में।

0: कर दो गले में हिया। शिवाय गौरी बदनाम जब्रिया शुयाय मेषा धरना सखाया हरि ही ओम पिनाक हस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाक हस्ताय सनातनाय ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकाराय नमः शिवाय ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वा वस्तम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुण्यरी काक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि यस्मृत पुण्यरी काक्षम स्वबाह्याभ्यंतर शुचि ज्यादा हो गए Put some more, yeah, this. That's all right. What's up?
1: Take knife away. After prayer will take off. Hey boy, come here.
0: तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय गुड गुड पिनाकहस्ताय जटाधराय गुड ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय ए प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण क्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु जगत्सनः हरि ओम गंगे चैमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम ओम जल स्नानम करिष्यामि श्रीगम गणाधिपतये नमः हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि ओम श्री नारायण गंगे जैमिने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कसन इति जलस्नानम करिष्यामि इति जलस्नानम करिष्यामि ओम नमः

ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारकम पावन यज्ञ हेतु पय स्नार्थम प्रतिगृहताम ओम इति पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहताम शर्करया स्नानार्थम प्रतिगृहताम। हरिः ओम ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृहताम। हरिः ओम कामधेनु समुत्पन्नम सर्वेषां जीवनम परम पय स्नानार्थम प्रतिगृहताम पावन यज्ञ हेतु च पय स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ओम सदा शिवाय नमः साम सदा शिवाय नमः। एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग। हरिम सदा शिवाय नमो नमः साम सदा शिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम तरु पुष्प रेतु समुद्भूतम सुस्वादम मधुरम मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृहताम इदिम मधु स्नानम करिष्यामि शिवलिंगाय नमो नमः। हरिः ओम ओम पयस्वस्तु समुद्भूतम मधुराम्ल शशिप्रभम दद्यानीतमयानीतम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। ओदो सदाशिवाय नमः। ओम सदाशिवाय नमः साम्ब सदाशिवाय नमः। हरि ओम पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृहताम। हरिः ओम पंचामृतम मयानीतम पयोदधि घृतम मधु शर्करया समायुक्तम।

0: सनाया भस्मांगराय महेश्वराय पिनाकहस्ताय सनातनाय यक्षस्वरूपाय जटहराय देवाय दिगाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय देवाय दिव्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
1: तो चावल और चावल भी लगाइए, सब लौंग इलायची वस्त्र जनेऊ। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय। ओम माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पूजार्थं प्रतिगृह्यतां नानः रत्नानि सुगंधिनी फलानि च मया दत्तानि लेपार्थं पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुगीफलं मया दत्तं नागवल्लीर्दलयुक्तं एलाचूर्णादिसंयुक्तं नागवल्लीर्चूर्णसंयुक्तं समर्पयामि। ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसु अनंत पुण्यं फलं ददत् शान्तिं प्रयक्ष्यमे दक्षिणां समर्पयामि साम सदा शिवाय नमो नमः। वस्त्रम् ओम लोकलज्जा निवारणे मया पिपादिते नलक्ये वस्त्रं समर्पयामि श्रीनारायण साम सदा शिवाय नमः। बस अब धतुर की जगह में इसी को हम करें, इसको धतुर को स्मरण करके। हरि ओम धतुर सहित पुष्पादि समर्पयामि कान्नात कान्नात प्ररोहन्ति एवान दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण सतेन ये दुर्वाम समर्पयामि। बस त्रिदलम त्रिनेत्रम त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लपत्रम शिवार्पणम त्रिजनम

ओम माल्यादिनी सुगंधिनी, तिलक लगाइए सारे भगवान को तो पता है। कैन यू पास दैट थाली टू स्वामी जी। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंगजम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गम गणाधिपतये नमः। श्रीखन्नम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम बिलपेनम सुरश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृहताम श्रीगम गणाधिपतये नमो नमः। सिंदूर भी लगा दीजिए। सिंदूरम शोभनम चैव कामदम प्रतिगृहताम सिंदूरम शोभनम चैव सौभाग्यम सुखवर्धनम सुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहताम अक्षताश्च कुंकुमाक्ता शुभ्रा खुनाश्च निर्मला मया प्रपादिते देतुभ्यं वासति प्रतिगृहताम। थोड़ा सा लाल, व्हाइट में लाल बहुत अच्छा, एक बिंदु लगाई थी बूंद। हरि ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। हरि ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। समवन कैन प्ले द बेल। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ना अगरबत्ती

0: अच्छा,
1: शंकर भगवान
0: जय अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। इसको वन लीफ हियर एंड वाटर। वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। सम वाटर। हरि ओम कर्पूर गौरम कर
1: वाटर।
0: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा। ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा। ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवेदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ओम। ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
1: More water.
0: ओम प्राच्यै नमः। सिंदूर भी डालिए। ओम पश्चिमाय नमः। ओम उत्तराय नमः। उत्तर दिशे नमः। ओम दक्षिणाय नमः। ओम ईशानाय नमः। ओम आग्नेय नमः। ओम वायव्ये नमः। ओम नैऋत्ये नमः। शानाय नमः। ओम भूतलाय नमः। नीचे। ओम आकाशाय नमः। आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में। नाउ फ्लावर, वी नीड टू हैव फ्लावर।
1: ब्रिंग इन 9 कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन।
0: या दैट इज ऑलरेडी। हरि ओम। ओम सूर्याय नमः। ओम सोम सेता वाइट। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय लाल।

0: रेड. ओम भौमाय नमः. भौम हरिण. ऑलराइट. भौमाय नमः. नाउ ग्रीन. बुम बुदाय नमः. ओम बुम्बुदाय नमः. ओ येलो. ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः. नाउ व्हाइट डायमंड कलर. ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः. नाउ ब्लैक सनी कलर. ओम शमशनेश्वराय नमः. शमशनेश्वराय नमः. नाउ ब्लू. ओ ये या ओम राम राहवे नमः. ब्राउन. Oh, maybe that one like pinky style. Yeah, you got it? Okay. Yeah.
1: Where is the vokai? Where is the
0: Basma? There is a small katori, where is that Basma? Bas. Om Kim Kedave Namaha. Bas. Bas. Ab Agni ko प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें. ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षिण सूर्य अजायत श्रोता आद्वायु ब्राण समग्नि अजायत. ओम अग्ने सानिल्य गोत्र. ओम अग्ने सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः. हरि ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षुर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राणस मुखारदग्नि अजायत. बोलिए अग्नि देवता की जय. नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स. थ्री ओनली फर्स्ट थ्री. No. Different, separate. Yeah. Okay. Om Prajapataye Swaha. Om Agnaye Swaha. Good. Om Dhanantarave Swaha. Now, where is that long stick for the ghee? Ghee ke liye. Sure. Om Prajapate Swaha.
1: Now, just take it away.
0: Put it in your chest and when you say Swaha. Okay. Jisko jisko bhasma lagana bacha hai, unko bhi laga dijiye. Oh, jo piche aaye.
1: Ratan Devi or Suraj Devi. Those who just came now, put them till the gauze from this here. And where is this thali?

0: ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोदा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम् स्वाहा, ओम अम्मे अम्बिके अम्बालिके नमा नयति कश्चन सशक्त शोक सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं स्वाहा, एहे ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, साम्ब सदाशिवाय नमः स्वाहा, चारवेदाय नमः स्वाहा, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, अठारपुराणाय नमः स्वाहा, सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा, बद्रीनाथाय नमः स्वाहा, केदारनाथाय नमः स्वाहा, ठाकुरपुरे नमः स्वाहा, सोमनाथाय नमः स्वाहा, अमरनाथाय नमः स्वाहा, नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स
1: थाउजेंड नेम्स ऑफ द शिव,
0: ओम स्थिराय नमः स्वाहा, ओम

ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम प्रवराय नमः स्वाहा ओम वरदाय नमः स्वाहा ओम सर्वात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वविख्याताय नमः ओम सर्वस्मै नमः स्वाहा ओम सर्वकराय नमः स्वाहा ओम भवाय नमः स्वाहा ओम जटिने नमः स्वाहा ओम चर्मिणे नमः स्वाहा ओम शिखंडिने नमः स्वाहा ओम सर्वांगनाय नमः स्वाहा ओम सर्वभावनाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः ओम हरिणाक्षाय नमः स्वाहा ओम सर्वभूतहराय नमः स्वाहा ओम प्रभवे नमः स्वाहा ओम प्रवित्याय नमः स्वाहा ओम निवित्ताय नमः स्वाहा ओम नियताय नमः स्वाहा ओम शाश्वताय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम श्मशानवासिने नमः स्वाहा ओम भगवते नमः स्वाहा ओम खजराय नमः स्वाहा ओम गोचराय नमः स्वाहा ओम अर्दनाय नमः स्वाहा अभिवाद्याय नमः स्वाहा महाकर्मणे नमः स्वाहा तपस्विने नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा उन्मत्त वेश प्रच्छन्नाय नमः स्वाहा ओम सर्वलोक प्रजापतये नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा ओम वृषरूपाय नमः स्वाहा महायसे नमः स्वाहा महात्मने नमः स्वाहा सर्वभूतात्मने नमः स्वाहा विश्वरूपाय नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा ओम लोकपालाय नमः स्वाहा ओम अंतरहितमने नमः स्वाहा ओम प्रसादाय ओम हृगर्भये नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा ओम महते नमः स्वाहा ओम नियमाय नमः स्वाहा नियमाश्रिताय नमः स्वाहा ओम सर्वकर्मणे नमः स्वाहा ओम स्वयंभूताय नमः स्वाहा ओम आदये नमः स्वाहा ओम आदिकराय नमः स्वाहा ओम निधये नमः स्वाहा ओम सहस्रथाय नमः स्वाहा विशालाक्षाय नमः ओम सोमाय नमः स्वाहा ओम नक्षत्र साधकाय नमः स्वाहा ओम चंद्राय नमः स्वाहा ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम शनये नमः स्वाहा ओम केतवे नमः स्वाहा ओम ग्रहाय नमः स्वाहा ओम ग्रहपतये नमः स्वाहा ओम वराय नमः स्वाहा ओम अत्रये नमः स्वाहा अत्र नस्मकर्ते नमः स्वाहा ओम मृगबाणपाण्याय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम महातपसे नमः स्वाहा ओम घोर तपसे नमः स्वाहा ओम अदीनाय नमः स्वाहा ओम दीनसाधकाय नमः स्वाहा सम्मत सरकाराय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम प्रमाणाय नमः स्वाहा ओम परमात तपसे नमः स्वाहा ओम योगिने नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा महामीजाय नमः स्वाहा महारेतसे नमः स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा दिग्वाससे नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा मंचवेद नमस्ते नमः स्वाहा परमाय मंत्राय नमः स्वाहा सर्वभावकराय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा ओम कमंडलुधराय नमः स्वाहा ओम धनुन्ये नमः स्वाहा ओम बाणहस्ताय नमः स्वाहा ओम कपालवते नमः स्वाहा ओम असनये नमः स्वाहा।

0: सप्तघ्ने नम स्वाहा ओं खंगिने नम स्वाहा पट्टिशिने नम स्वाहा आयुधिने नम स्वाहा महते नम स्वाहा शुभस्ताय नम स्वाहा सुरूपाय नम स्वाहा ओं तेजसे नम ओं तेजकराय निधये नम स्वाहा उष्णीषिणे नम स्वाहा शुभक्राय नम स्वाहा उद्ग्राय नम स्वाहा ओं विनताय नम स्वाहा ओं दीर्घाय नम स्वाहा ओं ऋषिकेशाय नम स्वाहा ओं हरिकेशाय नम स्वाहा सुतीर्थाय नम स्वाहा ओं कृष्णाय नम स्वाहा श्रृंगालरूपाय नम स्वाहा ओं सिद्धार्थाय नम ओं मुन्नाय नम ओं सर्वशुभंकराय नम स्वाहा ओं अजाय नम स्वाहा ओं बहुरूपाय नम स्वाहा ओं गंधधारिणे नम स्वाहा ओं कर्पूरदिने नम स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नम स्वाहा ऊर्ध्वलिंगाय नम स्वाहा ऊर्ध्वसाये नम स्वाहा नवस्थलाय नम स्वाहा त्रिजटिने नम स्वाहा चिरवाससे नम स्वाहा ओं रुद्राय नम स्वाहा ओं सेनापतये नम ओं विभवे नम ओं अहस्राय नम ओं नक्तसुराय नम स्वाहा ओं तिन्मगये नम स्वाहा ओं शूचवर्षाय नम स्वाहा शुभचर्षाय नम स्वाहा ओ गजग्ने नम स्वाहा ओं पाणिने नम स्वाहा ओं दैत्यग्ने नम स्वाहा ओं कालाय नम स्वाहा ओं लोकदात्रे नम स्वाहा ओं गुणकाराय नम स्वाहा सिंहादूलरूपाय नम स्वाहा आर्धचम्बावरावृत्ताय नम स्वाहा कालयोगिने नम स्वाहा महानादाय नम स्वाहा ओं सर्वकामाय नम स्वाहा ओं चतुष्पदाय नम स्वाहा ओं निशाचराय नम स्वाहा ओं प्रेतचारिणे नम स्वाहा ओं भूतचारिणे नम स्वाहा ओं महेश्वराय नम स्वाहा ओं बहुभूताय नम स्वाहा ओं बहुधराय नम स्वाहा ओं सोनार्वे नम स्वाहा ओं अमिताय नम स्वाहा ओं गतये नम स्वाहा ओं नित्यप्रियाय नम स्वाहा नित्यनर्तनाय नम स्वाहा नर्तकाय नम स्वाहा सर्वलालसाय नम स्वाहा ओं घोराय नम स्वाहा ओं महातपसे नम स्वाहा ओं पाशाय नम स्वाहा ओं नित्याय नम स्वाहा ओं गिरिरुहाय नम स्वाहा ओं नवसे नम स्वाहा ओं सहस्त्रताय नम स्वाहा ओं विजयाय नम स्वाहा ओं व्यवसाय नम स्वाहा अंतरिद्याय नम स्वाहा ओं अतीन्द्राय नम स्वाहा अघर्णनाय नम स्वाहा ओं घर्षणात्मने नम स्वाहा यगने नम स्वाहा कामनाशकाय नम स्वाहा दक्षगपाहाय नम स्वाहा ओं सुसहाय नम स्वाहा मध्यमाय नम स्वाहा तेजपहारिणे नम स्वाहा बलग्ने नम स्वाहा मुदिताय नम स्वाहा अर्थनाय नम स्वाहा अजिताय नम स्वाहा अवराय नम स्वाहा गंभीरघोषय नम स्वाहा गंभीराय नम स्वाहा गंभीरबलहानाय नम स्वाहा न्यग्नोरूपधराय नम स्वाहा न्यग्रुधाराय नम स्वाहा ओं वृक्षकर्णस्थिराय नम स्वाहा ओं विभवे नम स्वाहा श्रुतिक्षणदर्शनाय नम स्वाहा महाकायाय नम स्वाहा महाननयाय नम स्वाहा विश्वक्षणाय नम स्वाहा ओं हरये नम स्वाहा यज्ञाय नम स्वाहा संयुगापीडवाहनाय नम स्वाहा तीक्षणातापाय नम स्वाहा ओं हयर्षाय नम स्वाहा सहायाय नम स्वाहा कर्मकालविदाय नम स्वाहा विष्णुप्रसादिताय नम स्वाहा यज्ञाय नम स्वाहा ओं समुद्राय नम ओं बड़मुखाय नम स्वाहा उतासनसाहासाय नम स्वाहा उतासनसहायाय नम स्वाहा ओं प्रशान्तन्वे नम स्वाहा उतासनाय नम स्वाहा उग्रतेजसे नम स्वाहा महातेजसे नम स्वाहा जन्याय नम स्वाहा बीजकालविदे नम स्वाहा ओं ज्योतिषायनाय नम स्वाहा ओं सिद्धये नम स्वाहा सर्वविग्रहाय नम स्वाहा ओं शिखिने नम स्वाहा ओं मुनिने नम स्वाहा जटिने नमः स्वाहा जलिने नमः स्वाहा ओम मूर्ति जाय नमः स्वाहा मूर्धजाय नमः स्वाहा ओम बलिने नमः स्वाहा बैनविने नमः स्वाहा ओम पणविने नमः स्वाहा ओम तालिने नमः स्वाहा ओम खलिने नमः ओम कलंक कटाय नमः स्वाहा ओम नक्षत्र विग्रह हस्ताय नमः स्वाहा गुणबुद्धाय नमः स्वाहा ललाय नमः स्वाहा ओम अगमाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम विश्वाहवे नमः स्वाहा ओम विभागाय नमः स्वाहा ओम सर्वगाय नमः स्वाहा अमुखाय नमः स्वाहा ओम विमोचनाय नमः स्वाहा सुरासुराय नमः स्वाहा हिरण्यकवचजताय नमः स्वाहा मेदजताय नमः स्वाहा बलचारिण्ये नमः स्वाहा महीचारिण्ये नमः स्वाहा ओम श्रुताय नमः स्वाहा ओम सूर्य तुर्य विदोनिताय नमः स्वाहा सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा व्यालरूपाय नमः स्वाहा गुहावासिने नमः स्वाहा गुहाय नमः स्वाहा मालिने नमः स्वाहा तरंगविदे नमः स्वाहा त्रिदशाय नमः स्वाहा त्रिकालरहिते नमः स्वाहा कर्म संबंध विवेचनाय नमः स्वाहा असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा ओम युधि शत्रु विनाशाय नमः स्वाहा सांग प्रसादाय नमः स्वाहा दुर्वासने नमः स्वाहा सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा प्रस्कंदाय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदे नमः स्वाहा अतुल्याय नमः स्वाहा यज्ञ विभागदाय नमः स्वाहा सर्वसवाय नमः स्वाहा सर्वचारिणी नमः स्वाहा दुर्वासे नमः स्वाहा ओम वासाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा ओम हेमाय नमः स्वाहा ओम हेमकाराय नमः स्वाहा निष्कमाय नमः स्वाहा ओम सर्वधारिणी नमः स्वाहा धरोदत्ताय नमः स्वाहा लोहिताक्षाय नमः स्वाहा ओमाक्षाय नमः स्वाहा विजयाक्षाय नमः स्वाहा विशारदाय नमः स्वाहा सहस्राय नमः स्वाहा ओनिग्राय नमः स्वाहा ओमकर्त्रे नमः ओम सर्वपरिचरणिसाय नमः स्वाहा सर्वपरिचिरनिवासानाय नमः स्वाहा मुख्याय नमः स्वाहा अमुख्याय नमः स्वाहा ओम देहाय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा सर्वकामदाय नमः स्वाहा सर्वकाल प्रसादाय नमः स्वाहा ओम सुबलासाय नमः स्वाहा ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा सर्वकामवराय नमः स्वाहा ओम सर्वकाय नमः स्वाहा सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा आकाशनिवासाय नमः स्वाहा निपातिने नमः स्वाहा अवसाय नमः स्वाहा ओम खगाय नमः स्वाहा ओम रौद्रूपाय नमः स्वाहा अंशवे नमः स्वाहा आदित्याय नमः स्वाहा बहुरश्मे नमः स्वाहा ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा महावेगाय नमः स्वाहा मनवेगाय नमः स्वाहा निशाचराय नमः स्वाहा सर्ववासिने नमः स्वाहा श्रेयवासिने नमः स्वाहा उपदेशकराय नमः स्वाहा ओम अकराय नमः स्वाहा ओम मुनये नमः स्वाहा आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा ओम संभवाय नमः स्वाहा संमग्नाय नमः स्वाहा सहस्रदाय नमः स्वाहा ओम पक्षिणे नमः स्वाहा ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा अधिशिप्ताय नमः स्वाहा विषामतवे नमः स्वाहा ओम उन्मादाय नमः स्वाहा ओम मदनाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम असस्ताय नमः स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा ओम असये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः ओम स्वाहा ओम दक्षिणाय नमः ओम स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धोगिने नमः स्वाहा ओम महर्षये नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा भिक्षवे नमः स्वाहा भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा विपणाय नमः स्वाहा मृदवे नमः स्वाहा अभयनाय नमः स्वाहा विशाखाय नमः स्वाहा षष्ठीभागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा भद्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः स्वाहा नाउ इन 360 ओनली ये 360 हो गए जस्ट वी फिनिश Yeah, 700. So, this is good meditation. Keep continuing. Meditation in Kali Yuga. Om Viskambine Namaha, Swaha Chamustamanaya Namaha, Swaha Vrittavittakaraya Namaha, Swaha Talaya Namaha, Swaha Madave Namaha, स्वाहा मधुकुलोचनाय नमः स्वाहा वाचस्पताय नमः स्वाहा बाजसेनाय नमः स्वाहा नित्यमाश्रित पूजिताय नमः स्वाहा ब्रह्मचारिणे नमः स्वाहा लोकचारिणे नमः स्वाहा सर्वचारिणे नमः स्वाहा विचारविदे नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा निशाचरिणे नमः स्वाहा पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा ओम निमित्ताय नमः स्वाहा ओम नंदये नमः स्वाहा ओम नंदीकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा ओम नंदिनी नमः स्वाहा ओम नंदाय नमः स्वाहा नंदीगोवर्धनाय नमः स्वाहा ओम भागहरिणे नमः स्वाहा नियश्रिये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा पितामहाय नमः स्वाहा चतुर्मुखाय नमः स्वाहा ओम महालिंगाय नमः स्वाहा ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा युगवहाय नमः स्वाहा बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा बीजकर्ते नमः स्वाहा अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा बलाय नमः स्वाहा इतिहासाय नमः स्वाहा सकल्पाय नमः स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा निशकराय नमः स्वाहा दम्भाय नमः स्वाहा ओम अमदाय नमः स्वाहा ओम वेदम्भ्याय नमः स्वाहा ओम वैश्याय नमः स्वाहा वसकराय नमः स्वाहा कलये नमः स्वाहा ओम लोकर्ते नमः स्वाहा ओम पशुपतये नमः स्वाहा ओम महाकर्ते नमः स्वाहा ओम अनौषधाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम परमाय ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम बलवते नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम नित्ये नमः ओम अनित्ये नमः ओम शुद्धात्मने नमः स्वाहा ओम शुद्धाय नमः स्वाहा ओम मान्याय नमः स्वाहा ओम गतागताय नमः स्वाहा ओम बहुप्रसदाय नमः स्वाहा ओम सुप्रश्नाय नमः स्वाहा ओम दर्पणाय नमः स्वाहा ओम अमित्रजिते नमः स्वाहा ओम वेदकाराय नमः स्वाहा ओम मंचकाराय नमः स्वाहा ओम विदिशे नमः स्वाहा ओम समरदर्दनाय नमः स्वाहा ओम महाभिनिशाय नमः स्वाहा ओम महाघोराय नमः स्वाहा ओम वसिने नमः स्वाहा ओमकराय नमः स्वाहा अमृज्वलाय नमः स्वाहा महाज्वलाय नमः स्वाहा ओम आदि विदुम्बाय नमः स्वाहा ओम हुताय नमः स्वाहा ओम विषे नमः स्वाहा विषाय नमः स्वाहा शंकराय नमः ओम नित्यवर्षिणे सो नमः ओम धूम्रकेताय नमः स्वाहा ओम नीलपराय नमः स्वाहा ओम आंगुलद्याय नमः स्वाहा ओम शोभनाय नमः स्वाहा ओम निवर्गाय नमः स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः गीत है शिष्याय नमः ओम स्वतिभावाय नमः ओम भागिने नमः ओम भागकराय नमः स्वाहा ओम लघवे नमः स्वाहा उत्सन्नाय नमः स्वाहा महंकराय नमः स्वाहा महागरपराय नमः स्वाहा कृष्णवचाय नमः स्वाहा सुवर्णाय नमः स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः स्वाहा ओम महापादकाय नमः स्वाहा महाहस्ताय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा महायशसे नमः स्वाहा महाग्रभूमि नमः स्वाहा महामात्राय नमः स्वाहा महानेत्र्याय नमः स्वाहा निशालाय नमः स्वाहा महाकांताय नमः स्वाहा महाकर्णाय नमः स्वाहा महेष्टाय नमः स्वाहा हणवे नमः स्वाहा महाहणवे नमः स्वाहा मानसाय नमः स्वाहा महागम्भवे नमः स्वाहा महागविषाय नमः स्मरसानभाजे नमः महाभक्षे नमः ओम महेश्वराय नमः स्वाहा मरुरसकाय नमः स्वाहा अंतरात्मने नमः स्वाहा मृगालाय नमः स्वाहा ओम लंबानाय नमः स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः स्वाहा महामायाय नमः स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानीये नमः स्वाहा पयोनिधये नमः स्वाहा महादंताय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा महाजीवाय नमः स्वाहा ओम महामुखाय नमः स्वाहा महानखाय नमः स्वाहा महासुराय नमः स्वाहा महाकोशाय नमः स्वाहा महाजटाय नमः स्वाहा प्रसन्नाय नमः स्वाहा ओम प्रसादाय नमः स्वाहा पर्वत्याय नमः स्वाहा गिरिसादनाय नमः स्वाहा स्नेहाय नमः स्वाहा ओम आश्रयाय नमः स्वाहा ओम अजिताय नमः स्वाहा महामुनये नमः स्वाहा वृक्षकाराय नमः स्वाहा वृक्षकेतवे नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बाहुबायनाय नमः स्वाहा गंडलिने नमः स्वाहा मेरुदाग्ने नमः स्वाहा मेरुधाम्ने नमः स्वाहा देवादि नमः स्वाहा देवाधिपतये नमः स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः स्वाहा सामवर्षीयाय नमः स्वाहा साक्षसामिश्रियाय नमः स्वाहा ऋक्सहस्रामितिक्षणाय नमः स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः स्वाहा ओम गुह्याय नमः स्वाहा प्रकाशाय नमः स्वाहा जंगमाय नमः स्वाहा अमोघराय नमः स्वाहा प्रसदाय नमः स्वाहा अभिज्ञाय नमः स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः स्वाहा उमकराय नमः स्वाहा ओम प्रियाय नमः स्वाहा उसर्वाय नमः स्वाहा कनकाय नमः स्वाहा कंचन छवे नमः स्वाहा ओम नाभय नमः स्वाहा नंदिकाराय नमः स्वाहा ओम भावाय नमः स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः स्वाहा ओम स्थिराय नमः स्वाहा द्वादशाय नमः स्वाहा ओम त्रासनाय नमः स्वाहा ओम आद्याय नमः स्वाहा ओम यज्ञाय नमः स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः स्वाहा नक्तम नमः ओम कलये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम मकराय नमः स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः स्वाहा ओम सगणाय नमः स्वाहा ओम गुणकराय नमः स्वाहा ओम भूत वाहन सारथे नमः स्वाहा ओम भस्माय नमः स्वाहा भस्मधाराय नमः स्वाहा भस्मगोतने नमः स्वाहा भस्मसयाय नमः स्वाहा भस्मगोतने नमः स्वाहा भस्मभूताय नमः स्वाहा ओम तरवे नमः स्वाहा ओम गणाय नमः स्वाहा लोकपालाय नमः स्वाहा अलोकाय नमः स्वाहा ओमात्मने नमः स्वाहा ओम सर्वभूजिताय नमः स्वाहा ओम शुक्लाय नमः स्वाहा त्रिशुकाय नमः स्वाहा संपन्नाय नमः स्वाहा अशुचाय नमः स्वाहा भूत निविशिताय नमः स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः स्वाहा क्रियावस्थाय नमः स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः ओम ओम बराय नमः स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः स्वाहा इट्स हाफ हाफ ऑफ द वे नाउ
1: ओके आई थिंक वी विल नीड राइस मोर
0: हरि ओम ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा सुनिश्चलाय नमः स्वाहा कपिलाय नमः स्वाहा कपिशाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा आयुषे नमः स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदिते नमः स्वाहा तक्षरताय नमः स्वाहा सुविज्ञाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः स्वाहा उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा ओम वंशाय नमः स्वाहा वंशनादानाय नमः स्वाहा अविन्दाय नमः स्वाहा अनिन्दिताय नमः स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा मायाविने नमः स्वाहा ओम सुरिदाय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलघाय नमः स्वाहा बंदनाय नमः स्वाहा बंदकर्ते नमः स्वाहा सुबंधमीजाय नमः स्वाहा सहसारगे नमः स्वाहा सहज्ञानरथे नमः स्वाहा सकारमानाय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा मायायुधाय नमः स्वाहा बहुधानिन्त्याय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम अमरेशाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा ओम सुराग्रिणी नमः स्वाहा अहिर्भुद्याय नमः स्वाहा अनिलाभाय नमः स्वाहा शेखितानाय नमः स्वाहा हविषे नमः ओम अजय पातके नमः स्वाहा अजय कपाते नमः स्वाहा ओम कापिले नमः स्वाहा त्रिशंके नमः स्वाहा अजिताय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम धनंतरे नमः स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः स्वाहा वैष्णवाय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओम तोष्ट्रे नमः स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा ओम धराय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा अर्थमे नमः स्वाहा सवित्रे नमः स्वाहा ओम रवये नमः स्वाहा ओम संगे नमः स्वाहा विधात्रे नमः स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा ओम विभवे नमः स्वाहा ओम बणविवायिने नमः स्वाहा ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा सर्वकामगुणवहाय नमः स्वाहा पद्मनाभाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा चन्द्रवस्त्राय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाह बलवते नमः स्वाह उपशांताय नमः स्वाह पुराणाय नमः स्वाह पुण्य संजने नमः स्वाह।

0: ओम ए नाम स्वाहा कुरु कर्त्रे नम स्वाहा ओम कुरु वासिने नम स्वाहा कुरु भूताय नम स्वाहा ओम गुण दोषाय नम स्वाहा ओम सर्वासाय नम स्वाहा धर्मचारिणी नम स्वाहा सर्वेषां प्राणिनां पतये नम स्वाहा ओम देवा देवाय नम सुमुख सक्ताय नम स्वाहा ओम सते नम स्वाहा ओम असते नम स्वाहा ओम सर्वरत्न वेद नम स्वाहा ओम कैलासगिरी वासिने नम स्वाहा हिमविद्नि संस्थाय नम स्वाहा हिमबद्धि सहस्रसाय नम स्वाहा ओम कुलहारिणे नम स्वाहा ओम कुलकत्रे नम स्वाहा ओम भवविद्याय नम स्वाहा ओम बहुप्रदाय नम स्वाहा ओम वाणिज्याय नम स्वाहा ओम वरदकिने नम स्वाहा ओम वृक्षाय नम स्वाहा ओम वकिलाय नम स्वाहा ओम चंदनाय नम स्वाहा ओम छदाय नम स्वाहा ओम अलोलाय नम स्वाहा ओम सारग्रीवाय नम स्वाहा ओम महाजत्रे नम स्वाहा ओम अलोचाय नम स्वाहा महासौदाय नम स्वाहा सिद्धकारिणे नम स्वाहा ओम छदाय नम स्वाहा ओम चंदनाय नम स्वाहा ओम वृक्षाय नम स्वाहा वरदकिने नम स्वाहा वाणिज्याय नम स्वाहा वकिलाय नम स्वाहा बहुप्रदाय नम स्वाहा बहुविद्याय नम स्वाहा सिद्धार्थकारिणे नम स्वाहा सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नम स्वाहा सिंहनादनाय नम स्वाहा सिंह धर्मराष्ट्राय नम स्वाहा सिंहगाय नम स्वाहा सिंहवाहनाय नम स्वाहा प्रभात्मने नम स्वाहा जगत्कालस्थनाय नम स्वाहा लोकहिताय नम स्वाहा अमतरवे नम स्वाहा सारंजाय नम स्वाहा नवचक्रांगाय नम स्वाहा केतुमालिने नम स्वाहा सवानाय नम स्वाहा भूतालयाय नम स्वाहा भूतपतये नम स्वाहा अहोरात्राय नम स्वाहा अग्निदिताय नम स्वाहा सर्वभूतानां बाह्यत्रे नम स्वाहा अनिलाय नम स्वाहा विभवे नम स्वाहा भवनाय नम स्वाहा अमोघाय नम स्वाहा संगताय नम स्वाहा अश्वाय नम स्वाहा भोजनाय नम स्वाहा प्राणधाराय नम स्वाहा घृतमिदे नम स्वाहा अमिताय नम स्वाहा दक्षाय नम स्वाहा सत्कृताय नम स्वाहा युगधापिताय नम स्वाहा गोपालाय नम स्वाहा गोपतये नम ओम गामाय नम स्वाहा गोमवर्चनाय नम स्वाहा ओम हरये नम स्वाहा ओम हिरण्यवाय नम स्वाहा प्रवेशिनाय नम स्वाहा गुहालपालाय नम स्वाहा प्रकृष्टाराय नम स्वाहा महर्षाय नम स्वाहा जितकामाय नम स्वाहा जितेन्द्राय नम स्वाहा ओम गंधधराय नम स्वाहा उषताय नम स्वाहा 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्य सक्ताय नम स्वाहा ओम रतये नम स्वाहा ओम नराय नम स्वाहा महागीताय नम स्वाहा मायानित्याय नम स्वाहा अप्सर गण वेत्य शिवाय नम स्वाहा महाकेतवे नम स्वाहा महाधातवे नम स्वाहा नैनक्यसुनचार्य नम स्वाहा नेकसानुचराय नम स्वाहा ओम चलाय नम स्वाहा ओम आवेदनीयाय नम स्वाहा आदेशयाय नम स्वाहा सगंध सुखावहाय नम स्वाहा तोरणाय नम स्वाहा ओम तारणाय नम स्वाहा ओम बाताय नम स्वाहा परिधने नम स्वाहा परिखेचराय नम स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नम स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नम स्वाहा ओम वृद्धाय नम स्वाहा अतिवृद्धाय नम स्वाहा ओम अतिविद्याय नम स्वाहा ओम गुणाधिकाय नम स्वाहा ओम नित्यामात्म सहाय नम स्वाहा देवासुरपतये नम स्वाहा ओम पतये नम स्वाहा ओम युक्ताय नम स्वाहा ओम युक्तभावे नम स्वाहा दिवि सुपर्णे नम स्वाहा असडाय नम स्वाहा ओम सुपर्षाय नम स्वाहा ओम ध्रुवाय नम स्वाहा ओम हरिणाय नम स्वाहा ओम हराय नम स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नम स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नम स्वाहा महापथाय नम स्वाहा ओम शिरोमणि नम स्वाहा सर्वलक्षणसिद्धाय नम स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नम स्वाहा ओम सर्वयोगिने नम स्वाहा महाबलाय नम स्वाहा सामग्नाय नम स्वाहा ओम अस्मायानाय नम स्वाहा तीर्थदेवाय नम स्वाहा महारथाय नम स्वाहा निर्विजयाय नम स्वाहा ओम जीवनाय नम स्वाहा ओम मंत्राय नम स्वाहा ओम मंचाय नम स्वाहा ओम शुभाक्षाय नम स्वाहा बहुकर्णनाय नम स्वाहा ओम रत्नभूताय नम रत्नंगाय नम स्वाहा महाबनी पाणिदेयाय नम स्वाहा महार्णबणी पानविदे नम स्वाहा ओम मूलाय नमः, स्वाहा ओम विशालाय नमः, स्वाहा ओम अमृताय नमः, स्वाहा ओम व्यक्त्या व्यक्त्याय नमः, स्वाहा ओम तपोनिधे नमः, स्वाहा ओम आरोहराय नमः, स्वाहा आधिरुहाय नमः, स्वाहा शीलधारिणे नमः, स्वाहा ओम महायसने नमः, स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः, स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः, स्वाहा ओम योगाय नमः, स्वाहा ओम युगकराय नमः, स्वाहा ओम हरये नमः, स्वाहा ओम युगरूपाय नमः, स्वाहा ओम महारूपाय नमः, ओम स्वाहा ओम महानगनाय नमः, स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः, स्वाहा ओम बधाय नमः, ओम स्वाहा महानागगणाय नमः, स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः, स्वाहा ओम मातपदाय नमः, स्वाहा ओम पादाय नमः, स्वाहा ओम पंडिताय नमः, स्वाहा ओम असलोपदाय नमः, स्वाहा बहुमालाय नमः, स्वाहा महामालाय नमः, स्वाहा शशिने हरसुलोचनाय नमः, स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः, स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः, स्वाहा ओम सफलदयाय नमः, स्वाहा अप्रतिलोचनाय नमः, स्वाहा विष्णवे नमः, स्वाहा मणिसिद्धाय नमः, स्वाहा ओम जटाधराय नमः, स्वाहा ओम बिंदवे नमः, स्वाहा ओम विसर्गाय नमः, स्वाहा सुमुखाय नमः, स्वाहा ओम सराय नमः, स्वाहा ओम सारुभूताय नमः, स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः, स्वाहा ओम सहायाय नमः, स्वाहा निवेदनाय नमः, स्वाहा सुखा जाताय नमः, स्वाहा सुगंधाराय नमः, स्वाहा महाधनुषे नमः, स्वाहा गंधपालिने नमः, स्वाहा ओम शंकाय नमः, स्वाहा उत्थानाय नमः, स्वाहा ओम मंथनाय बाहुबलये नमः, स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः, स्वाहा ओम सकलाय नमः, स्वाहा सर्वलोचनाय नमः, स्वाहा तलस्थालाय नमः, स्वाहा करस्थालिने नमः, स्वाहा ऊर्ध्वसमह नाननाय नमः, स्वाहा ओम महते नमः, स्वाहा ओम छत्राय नमः, स्वाहा सुछत्राय नमः, स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः, स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः, स्वाहा ओम मुन्नाय नमः, स्वाहा ओम विरूपाय नमः, स्वाहा ओम विकृताय नमः, स्वाहा ओम दंडिने नमः, स्वाहा ओम कुन्निने नमः, स्वाहा विकृणवणाय नमः, स्वाहा अरिहेच्छाय नमः, ओम कुंभाय नमः, स्वाहा ओम ककुभाय नमः, स्वाहा ओम वज्रिणे नमः, स्वाहा ओम शतविजाय नमः, स्वाहा सहस्रपादे नमः, स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः, स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः, स्वाहा ओम गुरवे नमः, स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः, स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः, स्वाहा ओम शरण्याय नमः, स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः, स्वाहा ओम पवित्राय नमः, स्वाहा त्रिककुळे मात्राय नमः, स्वाहा कनिष्ठाय नमः, स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः, स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माताय नमः, स्वाहा शतग्नि वास शक्तिमे नमः, स्वाहा पद्मगर्भाय नमः, स्वाहा महागर्भाय नमः, स्वाहा ब्रह्मगर्भाय नमः, स्वाहा ओम जलोद्भवाय नमः, स्वाहा गवस्ते नमः, स्वाहा ब्रह्मकृते नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः, स्वाहा ब्रह्मविदे नमः, स्वाहा ओम ब्राह्मणाय नमः, स्वाहा ओम गतये नमः, स्वाहा अनंत रूपाय नमः, स्वाहा ओम नैकात्मने नमः, स्वाहा ओ स्वयंभू तिग्म तेजसे नमः, स्वाहा ऊर्ध्वगामद्मे नमः, स्वाहा उपस्पदे नमः, स्वाहा बातहराय नमः, स्वाहा मनोजवाय नमः, स्वाहा चंदनीये नमः, स्वाहा चंदनीने नमः, स्वाहा पद्मनालग्राय नमः, स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः, स्वाहा ओम नराय नमः, स्वाहा कणिकार महाश्रगविणे नमः, स्वाहा ओम नीलमौलये नमः, स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः, स्वाहा उमापतये नमः, स्वाहा उमाकांताय नमः, स्वाहा जाह्वविभृते नमः, स्वाहा उमाधवाय नमः, स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः, स्वाहा ओम वरदाय नमः, स्वाहा ओम वरेण्याय नमः, स्वाहा ओम सुमहास्वाय नमः, स्वाहा महाप्रसादाय नमः, स्वाहा दमनाय नमः, स्वाहा शत्रुघ्ने नमः, स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः, स्वाहा प्रीतात्मने नमः, स्वाहा परमात्मने नमः, स्वाहा प्रयात्मने नमः, स्वाहा प्रधानधृते नमः, स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः, स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः, स्वाहा धर्मसाधने नमः, ओम धर्मसाधारणोपराय जन्मः, स्वाहा चराचरात्मने नमः, स्वाहा सूक्ष्मात्मने नमः, स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः, स्वाहा शारदस्याय नमः, स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः, स्वाहा विश्वदवस्य नमः, स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः, स्वाहा ओम व्यासाय नमः, स्वाहा ओम स्वर्गाय शृंगोपाय विस्ताराय नमः, स्वाहा पर्यायोनराय नमः, स्वाहा ओम ऋतये नमः स्वाहा ओम संवत्सराय नमः स्वाहा ओम मासाय नमः स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः स्वाहा ओम शंका समनाय नमः स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः स्वाहा लवेभ्यो नमः स्वाहा मातृभ्यो नमः स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः स्वाहा ओ वणशिभ्यो नमः स्वाहा क्षणभ्यो नमः स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः स्वाहा प्रजा विजाय नमः स्वाहा ओम लिंगाय नमः स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः स्वाहा पित्रे नमः स्वाहा मात्रे नमः स्वाहा ओम पितामहाय नमः स्वाहा स्वर्ग द्वाराय नमः स्वाहा प्रजा द्वाराय नमः स्वाहा मोक्ष द्वाराय नमः स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः स्वाहा निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम राधनाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः स्वाहा ओम पराय गत्ये नमः स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः स्वाहा देवासुर परायणाय नमः स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः स्वाहा देवासुर गणैकृत्ये नमः स्वाहा देवी देवताय नमः स्वाहा देवादि देवताय नमः स्वाहा देवर्षये नमः स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम विश्वाय नमः स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः ओम सर्वदेवी मयाय नमः स्वाहा अंजिन्याय नमः स्वाहा देवतात्मने नमः स्वाहा आत्मसमवाय नमः स्वाहा उद्यमे नमः स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः स्वाहा ओम वेदाय नमः स्वाहा विरजाय नमः स्वाहा नीरजाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा इराय नमः स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः स्वाहा बेग्राय नमः स्वाहा देवसीमाय नमः स्वाहा नरऋषभाय नमः स्वाहा विबुधाय नमः स्वाहा अग्नबराय नमः स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः स्वाहा सर्वदेवाय नमः स्वाहा तपोमाय नमः स्वाहा ओम सुक्ताय नमः स्वाहा सुयुक्ताय नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा अभिवाय नमः स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा ओम निसर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम गृहाय नमः स्वाहा अव्याय नमः स्वाहा प्रसन्न प्रभाय नमः स्वाहा वज्रिणे नमः स्वाहा शिवनाय नमः स्वाहा ओम कांताय नमः ओम निजाय सर्गाय नमः स्वाहा ओम पवित्राय नमः स्वाहा सर्व पावनाय नमः स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः स्वाहा प्रभुजे नमः स्वाहा राज राजाय नमः स्वाहा निराजायाय नमः स्वाहा अविराय नमः स्वाहा अविरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा विरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रिय वर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः स्वाहा सत्यव्रताय नमः स्वाहा शुचये नमः स्वाहा व्रताधिपाय नमः स्वाहा ओम परस्परे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः स्वाहा ओम जगतपतये नमः स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावली शिवार्पणम् स्वाहा हर हर महादेव शिव जी के 11 1008 तो शिव जी को वो करके फिर करते हैं, बचा है बचा, वेट वेट है, हाँ। तो 11 times we everyone chant ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर, ओके okay.

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्ण आहुति देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो यही है, यही है। नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। ये यहाँ पे बचा हुआ गिरा दीजिए। वट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा, सर्व वै पूर्ण स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसोः। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम, दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसि बलमहि देहि, मन्युमसि मन्युमहि देहि, सहोसि सहोमहि देहि, तेजोसि तेजोमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, ओजोसि ओजोमहि देहि, मन्युमसि मन्युमहि देहि। ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर। ओम देव शांति रंतरिक्ष गो शांति, हस्ते शांति रापा शांति रो सधाया।

सद्गमय तमसो मा जो मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। हरिओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय, सांब सदा शिव जी को जय, बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय, पशुपति नाथ को जय, सदा शिव को

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ॐ शान्तिः शान्तिः शांतिः। श्री दीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स here in this hall and all dear bhaktas around the world who's with us through our webcast. Welcome. It's a beautiful day. It was the Mahashivaratri. Mahashivaratri ceremonies, pujas, and we have established here beautiful new Shiva temple. There was Amausha. Amausha means the dark night, dark moon is opposite to the full moon. Moon is very powerful. Moon is a balancing principle.

0: अलख पुरी जी महादेव की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

आराध्य भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी

0: ये निर्गुण से सगुण बन आए, भक्तन के हितकारी प्रभु, भक्तन के हितकारी। दिस वी हैव ट्रांसलेटेड यस्टरडे, द
1: Tak tohle už jsme přeložili včera.
0: थर्ड
1: Teď dál.
0: आप

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्रीदीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वा गुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेवा की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: ओम
1: zítra.
0: शांति शांति शांति।

0: दीप नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव
1: जय।
0: देवपुरी सा महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
1: जय।

is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master, and in Hindi we say guru. That's all. Jagda keval bhasa ka hai aur kuch bhi nahi. Aap Ramayana Gita padhoge, to Musliman shayad nahi samjhenge, svikar nahi karenge. Aur agar wo Quran Urdu padhenge, to aap svikar nahi karoge, kyun aap nahi samajh rahe ho. Baat wohi hai. Achhi baat. रामायण भी कहती है अच्छी बात कुरान भी कहती है बाइबल भी कहती है डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज इज ओनली वन एक कहता है कि मेरे दादी सा है कोई है दूजा कहता है कि मारी मामी है कोई है तेरा मामा री बू है कोई मारी माँ है मामी नहीं कहना एक है हमारी दादी है एक हमारे माँ है दूसरे कहता है हमारी बेटी है तीसरे कहता हमारी बहन है और दूसरा कहता है हमारी बुआ है दूसरा कहता हमारे काकी है आंटी नहीं ये बेटा आजकल कह के आंटी ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बात करो है काका काकी बाजी बाजी वो करो लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है हमारी पोती है वो महिला एक ही है कि नहीं एक ही महिला है नाम से बांट दिया भाषा से बांट दिया दादी है माँ है बेटी है बहन है बुआ है काकी है पोती है बट है वो एक ही सिमिलरली गॉड इज वन व्हिच गॉड हैज नो नेम And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है नहीं बाप जी हमारे गुरुकुल में नहीं जानो हाँ हमारे स्कूल में जानो है उन्होंने ठा तो है को नहीं बाबूजी मां टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ा नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरों ने नौकरी नहीं लागे नौकरी पड़ी खाडा रे माँ मनुष्य बनाओ बच्चे को आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिर मन झाड़ू लगावाने को नहीं रखे इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है तुमने वो ज्ञान सीखा तुमने वो संस्कार सीखे जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार आज तो बस नौकरी चाहिए पया अंग्रेजी बोलो नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा मैं क्यों अंग्रेजी में भाषण दोगे नहीं नहीं मैं हिंदी में बोलू बाप जी बोलो आदि कचरी हमें अंग्रेजी बोले मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो के स्टेट अरे बाबा जी स्टेट जाओ अरे की स्टेट में जाऊं गुजरात में जाऊं के राजस्थान में जाऊं के मध्य प्रदेश में जाऊं हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही स्टेट स्टेट आथोरी अंग्रेजी अरे पूरी सीखी नहीं बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए 3 साल के बाद वापस

आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो वो टैगोर साहब को कहते मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी। वो चार शब्द नहीं कियो और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली बोल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी बोल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वो ही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेशी नहीं, रेशी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नी रेशी सुथारी आ होनारी परी जाई क्या बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जाई। कौन कहवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृत के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो, सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, बट आई एम टेलिंग दिस इंडियंस दे शुड लर्न देयर मदर टंग and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, where it is, the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. Or महाराज जी वो क्या कहते योगा के अंदर हमें, तो हम कहते हैं अच्छा भाई, अरे भाई गाड़ी चलाओ कॉन्सेंट्रेशन करो, तो वो क्या कौन सा स्टेशन, अरे बाप जी कौन सा स्टेशन चल रहे हो नहीं, लो कॉन्सेंट्रेशन ने कौन सा स्टेशन, आधारी अंग्रेजी ने आधारी हिंदी, सही बात है कि नहीं। इसलिए दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन, सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन एबिलिटीज, दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप्ड ऑफ दैट divine who gave you the knowledge, then is the birthday of Bhagwan Ved Vyasa and every disciple adores, remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture, to protect the culture is called the living culture. सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म, व्हाट डज इट मीन, व्हाट मीन्स द लिविंग धर्म, वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड, it is the dharma of the mother to give birth to the child, it's her dharma, wo sanatan dharma hai. A one tree gives you fruit, it is the dharma of the fruit tree to give the fruit,
एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है। और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है। कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में, स्कूल के मास्टर आपके गुरु है। इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन, द रिलेशन ऑफ द मदर चाइल्ड हस्बैंड वाइफ नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयरफॉर द गुरु पूर्णिमा हैज अ ग्रेट मीनिंग्स देन अदर एनी फेस्टिवल्स। हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी, वो एक की जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वही। इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल। गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल, जिंदा। और सब संप्रदाय चली जाएगी, लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप आए, यू केम ऑल वेलकम। नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत। तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा। कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है। तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यहीं पे होना के बाबू जी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा, कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है। मां कोई नाग देवता बैठा वेला तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है, जो ध्यान रख जो भाई सरप अरप आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो। और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कह के बाप जी ओ अटे बैठे तो। इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है, भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना। सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे, तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड। इफ यू वांट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी वेबकास्ट एंड भजन्स, वेन एवर यू लाइक यू कैन पुट ऑन योर television and you can see or hear the bhajan. Bol Sanatan Dharma ki Jai, Sat Guru Dev ki Jai.

दीप नारायण भगवान है। देयरफॉर सत्संग इज वेरी रेयर स्पेशल इन कलयुगा। गुरुजी यूज्ड टू से दैट आर थाउजेंड्स डिफरेंट वेज टुवर्ड्स द डिस्ट्रैक्शन। And very few ways which is towards the liberation. You realized all, our World Peace Summit was a spiritual summit. The whole day was a spiritual atmosphere. I attend many conferences. The hall is full till

0: विराजत।
1: ओम शलकुरुजी महादेव की
2: जय।
1: वादिदेव देवेश्वर महादेव
2: की जय।
1: श्रीदेव नारायण भगवान
2: की जय।
1: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद गुरुजी सद्गुरुदेव भगवान
2: की जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद गुरुजी योगराज
2: की जय।
1: नंदीश्वर भगवान
2: की जय।
1: शिव शंकर भोलेनाथ
2: की जय।
1: हनुमा पार्वती पते
2: हर हर महादेव।
3: Oh, my God.

ओम श्री दीप नारायण भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म

जय। श्री देव पुरुष महादेवा की जय। धरम सम्राट स्वामी मदवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। श्याल

मेरा लिख दो मारे रूम रूम मेरा नैना में नरसिंह लिख कौन में गरु ज्ञाने नैना नरसिंह लिख दो कौन में गरु ज्ञाने लिख दो मारे रूम मेरा लिख दो मारे रूम मेरा आता मैं कमला पति लिख दो भुज पे लिख

साथी में आड़ू मानलिक ओ नाभि में रुद्रा से साथी में अरमा नलिक दो नाभि में रुद्रा लिख दो मारे रूम मेरा लिख दो मारे रूम मेरा गोडो पे कन्हैया लिख

ना गौरी साथ ले के नंदी साथ ले के आना आना गरुसा मेरे या आना आना गरुसा मेरे या।

परम रूप में आना, विष्णु साथ लेके लक्ष्मी साथ एके आना, आना गरुसा मेरे यार आना आना।

0: Sridip Naran Bhagwan Ki Jai, Shri Sata Gurudeva Ki Jai.
1: गुरु चरणों में अरसत तीरत है।